0: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accountant audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention the Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of the Open Radio.
1: So, Shailja ji, संजय जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने 12 किताबें लिखी हैं और आपका कहना ये है कि इनकी जो किताबें हैं उसमें बहुत ज़्यादा गहराई है। ऐसा लगता है कि कभी ये लगता है कि ये वकील हैं, कभी ये लगता है कि ये
2: आईएएस ऑफिसर हैं,
1: आईएएस ऑफिसर हैं,
2: रेंज फॉरेस्ट रेंजर हैं,
1: हाँ, या मतलब सिर्फ राइटर ही हैं, लेकिन ये एक्चुअली इंजीनियर भी हैं। इंजीनियर तो इनके पास क्वालिफिकेशन है, इनके पास सर्टिफिकेट है, इसके अलावा इन्होंने अच्छा काम भी किया है। मैकेनिकल इंजीनियर थे तो इन्होंने बड़ी अच्छा
2: M5 में आपका नाम दर्ज है। और मुझे तो ये लगता है कि हम जैसे साधारण प्रशंसकों से अलग प्रशासनिक प्रशिक्षण व सेवारत अधिकारियों को जो IAS IPS की जो ट्रेनिंग होती है, उन लोगों को आपकी किताब पढ़नी चाहिए।
1: और देखने में ऐसा लगता है कि अगर ये अपना जो हल्का हल्का सफेदी आ गई है इनकी मूंछों पर, अगर इसे भी काला कर लें तो लगता है 25 साल का लड़का कहाँ से आ गया।
3: जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, दरअसल ये सारा जो है, जो कुछ भी आप देखते हो मैं लिखता हूँ, इसमें मेन ये है कि अधिकतर समय मैं अध्ययन ही करता हूँ, चाहे वो गूगल से हो या किताबें खरीद के हो। अब तो उतना नहीं खरीदता मैं, लेकिन अभी तक ये था कि मैं हर साल जब इंडिया आता था तो करीब 20 किलो का पैकेट एक मेरा वहाँ से पोस्ट करता था, मैं यहाँ आता था। तो अभी तो जो मैंने अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया हो गया है, यहीं पे मिल जाती किताबें, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को लिख दे तो वो यहीं भेज देता है, बहुत और टाइम से दूसरे तीसरे दिन आ जाती है।
1: अच्छा, तो आप लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं?
3: पढ़ते हैं लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया पढ़ना, उसकी पढ़ते हैं, मैं केवल मैटर पढ़ता हूँ, जैसे कि अब टैक्स के ऊपर है तो, या अभी जैसे आपने देखा कि जैसे कि दीदी ने बताया कि इसके बारे में है, IAS IPS के बारे में, तो उनका वो सारा पढ़ना, लॉ के बारे में पढ़ना, और जो बीच में मैंने जैसे इस किताब में लिखा है कि जो वन विभाग में जो चोरियां हुई लकड़ी की, तो वो कौन कौन सी लकड़ी होती, क्या होती, वो सारा स्टडी करना, तो वो उसी में टाइम ज्यादा लगाता हूँ।
2: लेकिन किताब लिखने के लिए आपको रिसर्च काफी करनी पड़ती
3: है, बहुत ज्यादा, बहुत
2: कि इसमें आप जितने भी लिख रहे हैं वो फैक्चुअल चीजें हैं और आप अपने आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं। ये बताइए संजय जी, अब आपकी अगली किताब कौन सी है, 13वीं?
3: ये बड़ा मुश्किल है। ये तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे साथ इतना मतलब सुपरस्टिशन है थोड़ा सा। मेरी एक किताब थी जो आप, दूसरी किताब आपने पढ़ी है, झूठे नाते करके, झूठे नाते के टाइम पे हुआ कि ये कि वो किताब जो है एक बहुत बड़े पब्लिशर, उस जमाने में नया मतलब था पब्लिशिंग में, तो बहुत बड़े पब्लिशर ने वो मुझसे ले ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाकायदे, और जगन्नाथ करके पब्लिशर था हिंदी में, और उन्होंने मुझसे ले ली थी, और वो तो हमने जाके चौड़े हो गए अपने, जाके हमने दूसरे पब्लिशर को जो है हमें गा दिया, हमने कहा कि देखो अब हमको हल्के मत लेना, अब मैं बहुत बड़ा वो हो गया हूँ। अब उसमें हुआ क्या कि वो, और मैंने सब जगह गा दिया कि साहब ये है, देखिए मैं तो इनके साथ पब्लिश हो रहा हूँ, तुम लोग कोई चीज़ नहीं हो। तो उस हिसाब से हुआ क्या कि फिर कुछ ऐसी नज़र लगी कि जो लेडी थी रेनू अगाल करके थी, बहुत फेमस थी, उसकी द प्रिंट में बाद में काम करती थी वो, तो उन्होंने एक तो नौकरी छोड़ दी पहले, वो प्रिंट में चली गई, उसके बाद उनकी डेथ हो गई।
1: अच्छा,
3: और फिर वो हिंदी विभाग ही बंद हो गया उस पूरे पब्लिशर का।
1: अच्छा,
3: तो हमने कहा भाई इससे अच्छा है किसी कुछ बताना ही नहीं है। तो मैं कई किताबें एक साथ भी लिखता रहता हूँ, तो इसलिए उसका कोई वो नहीं है, जब आएगी किताब तो आपको पता चल जाएगा।
2: तो ये आप सीक्रेट रखेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी
3: ये थोड़ा सा है, मैं सुपरस्टिशियस हूँ थोड़ा सा।
1: एक्चुअली जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो सुपरस्टिशन शायद बढ़ जाता है।
3: हाँ बिल्कुल,
1: क्योंकि मैंने एक्चुअली अपने जीवन में भी कुछ ऐसा देखा है कभी कभी कि सुपरस्टिशन हो जाता है, क्योंकि आपके साथ अगर उसी तरह की घटना बार बार होती है तो आपकी समझ में आता है कि हाँ कुछ तो है। तो संजय जी, अभी तो आपसे काफी बात हो चुकी है, हम एक गीत सुनाएंगे अच्छा सा और उसके बाद दुर्गा शक्ति पर भी आ जाएंगे और आपकी किताब के बारे में और दुर्गा शक्ति के बारे में बात करेंगे और शैलजा जी की नवी बहुत सारी किताबें लिखी।
3: हाँ जी, बहुत
1: शैलजा जी की किताबों के बारे में भी बात करेंगे, दुर्गा शक्ति की भी बात करेंगे। तो क्योंकि समय सरकता जा रहा है तो एक गीत और हो जाए।
2: यस, तो ये बताइए प्रदीप जी, क्योंकि परसों है सोशल मीडिया का इंटरनेशनल डे।
1: हाँ हाँ,
2: तो और आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा हर व्यक्ति के जीवन का ये अभिन्न भाग है, तो थोड़ा सा इसमें हम चाहेंगे, और संजय जी ने इस पे भी कुछ लिख रखा है
3: जी,
2: तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा बहुत हम इस पे भी बात करें। और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि सोशल मीडिया सामाजिक बाधाओं को कम कर रहा है, ये लोगों के मानवीय मूल्यों की मजबूती के आधार पर जोड़ता है, पहचान के आधार पर नहीं। तो सोशल मीडिया की इतनी उपयोगिता है, सोशल मीडिया के अगेंस्ट इतना कुछ कहा जा रहा है, तो ये ज़रा बताइए कि आपका क्या विचार है सोशल मीडिया, फिर मैं अपने विचार बताती हूँ, फिर प्रदीप जी अपने।
1: इसके पहले एक वार्ता भेजी है हमें रंजना जी ने
2: जी,
1: उस वार्ता को सुन लेते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसके बाद बात करेंगे।
2: हाँ।
1: और उसके थोड़ी देर के बाद एक गीत और सुना देंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सोशल मीडिया की जो उन्होंने रंजना जी ने भेजी है, आशा है कि वो कहाँ गई, सोशल मीडिया मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, तब तक आप लोग बात करते रहिए, कहाँ गया।
3: हाँ देखिए, मैंने जो मेरा एक व्यंग संग्रह है खुरपेंच करके नाम है,
2: व्यंग खुरपेंच।
3: हाँ खुरपेंच कहते नहीं, बहुत बड़े खुरपेंची हो तुम।
2: हाँ, खुरपेंच,
3: जो खुरपेंच करता रहता है आदमी। हाँ, हाँ। तो उसमें मैंने एक व्यंग है उसी में जो छपाया, और बड़ा ये व्यंग संग्रह बड़ा फेमस हुआ था, इसका जो है बेस्ट सेलर रैंक 6 आया था कि उस टाइम पे डायमंड बुक से पब्लिश है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो ये इस पर लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक पे,
1: अच्छा
3: ये जो क्या कहना चाहिए सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया को मैंने उसमें नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक नुक्कड़। आपको याद होगा कि इंडिया में नुक्कड़ होते हैं जहाँ पे पान की दुकान और एक चाय की टपरी होती है और वहाँ लोग बैठे बकवास करते रहते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो अधिकतर जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल वही हो गया है, वहाँ नुक्कड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे बैठे बैठे कर
2: बिल्कुल कॉफी हाउस।
3: हाँ, तो उसको हमने एक और नाम दिया भी है, सिर्फ उटअल, खासतौर से व्हाट्सएप को।
1: चलिए मुझे मिल गई है रंजना जी की,
3: फिर आगे फिर बात करते हैं इस बारे में। जरूर।
4: श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे है। सोशल मीडिया डे एक कोई नया नाम नहीं है, बट इसके बारे में हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कि आखिर सोशल मीडिया ने हमें क्या कुछ दिया, हमसे क्या कुछ छीन लिया और हमें क्या कुछ सीखने की जरूरत है। जहां दुनिया मिलती है, हंसती है, सीखती है और कभी कभी बहस भी कर लेती है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया इंसान होता तो 30 जून को शायद कहता, थैंक यू दुनिया, मैं तो बस टाइम पास के लिए आया था, तुम लोगों ने मुझे करियर, राजनीति, रिश्ते और मीम्स का केंद्र बना दिया। आज सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं, ये तो एक वैश्विक खेल का मैदान है, जहां भारत का बच्चा रील बनाता है, ऑस्ट्रेलिया का युवक सर्फिंग की फोटो डालता है और दोनों को लाइक करने वाला कोई तीसरा इंसान कनाडा में बैठा होता है। तो आइए इस खास दिन पर सोशल मीडिया की दुनिया के एक मजेदार सफर पर चलते हैं रंजना रमन के साथ, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नजर से। भारत में सोशल मीडिया क्या है और इसका क्या अर्थ है? भारत में जहां हर कोई स्टार है, भारत में सोशल मीडिया का मतलब है ऊर्जा, उत्साह, रचनात्मकता और थोड़ी सी ड्रामा क्वीन वाली फीलिंग। यहाँ सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक राष्ट्रीय भावना है। भारत में सोशल मीडिया की खासियत ये है कि यहाँ रील्स ऐसे बनती हैं जैसे चाय हो, हर घर में हर समय। मीम्स इतनी तेजी से वायरल होते हैं कि सरकार की नोटिफिकेशन भी पीछे रह जाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हर कोई प्रोफेसर है, चाहे वो हेल्थ टिप्स हो या अर्थव्यवस्था। ट्विटर पर लोग ऐसे बहस करते हैं जैसे देश की किस्मत उसी थ्रेड में तय होनी है। लेकिन मजाक अपनी जगह, सोशल मीडिया ने भारत में असली बदलाव भी लाए हैं। भारत में सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है। छोटे शहरों के क्रिएटर्स को एक नया और बड़ा मंच मिल गया है। लोकल दुकानों को एक नया डिजिटल बाजार मिल गया है। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी अब तेजी से फैलने लगी है। स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस को एक नया जीवन मिल गया है। तो मिला जुला कर भारत में सोशल मीडिया एक डिजिटल चौपाल है जहां लोग मिलते हैं, भिड़ते हैं और सीखते भी हैं। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की नज़र से कैसा है सोशल मीडिया। यहाँ अगर कुछ शब्दों में मैं कहूँ तो वो कूल, कैजुअल और कॉफी के साथ। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया का अंदाज थोड़ा अलग है। यहाँ लोग कहते हैं नो वरीज मेट, पहले एक फोटो डालते हैं फिर काम शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया की कुछ अपनी खासियतें हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर बीच लाइफ, कैंगरू सेल्फी और कॉफी आर्ट सबसे ज्यादा चलती है। फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप्स इतने क्रिएटिव हैं कि खोई हुई बिल्ली भी 10 मिनट में मिल जाती है। लिंक्डइन यहाँ लगभग नेशनल नेटवर्किंग स्पोर्ट है। टिकटॉक पर ऑस्ट्रेलियाई ह्यूमर, सीधा सरल और थोड़ा सा सेटायर बहुत पसंद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया का प्रभाव भी थोड़ा अलग है। प्रवासी समुदायों को जोड़ने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की ताकत मिल रही है और सरकारी घोषणाएं सीधे जनता तक पहुंचती है। शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक अभियान चलाए जाते हैं। बहुसांस्कृतिक समाज को सोशल मीडिया एक मंच देता है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया का टोन है स्मार्ट, क्वाइट और थोड़ा सा ह्यूमर। अब देखते हैं ग्लोबल कनेक्शन भारत और ऑस्ट्रेलिया का कैसे सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। सोशल मीडिया ने दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब ला दिया है। भारत में बैठा कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ देख सकता है। सिडनी में रहने वाला कोई भारतीय परिवार अपने गांव की शादी लाइव देख सकता है। दोनों देशों के क्रिएटर्स एक दूसरे के साथ कोलैब कर सकते हैं। भारतीय त्योहारों की रौनक ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेंड बन जाती है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की हर जीत भारत में भी मीम्स का त्योहार बन जाती है। सोशल मीडिया ने दुनिया को छोटा, जुड़ा हुआ और कभी कभी थोड़ा सा नॉइजी बना दिया है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया हमें सिखाता क्या है? सोशल मीडिया हमें सिखाता है दोस्तों, खाना खाने के पहले फोटो खानी चाहिए। लोल का मतलब हंसना नहीं, ये बस एक औपचारिकता निभाना है। सीन का मतलब जवाब देना नहीं होता। और सबसे बड़ा सबक, अगर कुछ वायरल हो जाए तो समझ जाना कि इंटरनेट का मूड आज अच्छा है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? सोशल मीडिया एक दिन नहीं, एक दुनिया है। 30 जून का वर्ल्ड सोशल मीडिया डे हमें याद दिलाता है कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि कनेक्शन, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी की ताकत है। भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया है। थोड़ी हंसी, थोड़ी सीख और ढेर सारा स्क्रीन टाइम। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझदारी से करें, वरना आपकी पुरानी फोटो किसी दिन मीम बनकर सामने आ सकती है। धन्यवाद।
5: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
6: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
1: यह था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, आशा है कि आपको रंजना जी की मनोरंजक का जो वार्ता थी बहुत अच्छी लगी होगी और उन्होंने सारे पहलू कवर तो कर लिए हैं। लेकिन हमारे सामने बैठे हुए हैं संजय जी और शैलजा जी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है शैलजा जी?
2: सोशल मीडिया तो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आप बगैर सोशल मीडिया के कहीं रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसकी जो लोकप्रियता है उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इसके जो अगेंस्ट चीज़ें हैं उनको भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो मैं तो संजय जी से पूछूंगी, संजय जी आपने क्या प्रकाशित किया है इस विषय में?
3: देखिए, इसमें मेन जो बात है, ये बात सही है कि इसमें तमाम अच्छी बातें हैं, आपके पास एविडेंस मिल जाता है एज ए वकीलों के लिए कि साहब किसी ने कहीं कुछ हो रहा है तो उन्होंने उसकी वीडियो बना लिया और फटाफट जो है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सब जगह डाल दिया और गवर्नमेंट को भी जल्दी नोटिस में आ गया, तो वो सब तो अच्छी बातें तो हैं।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन एक इसमें एक इस खराबी है कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं लोग कि उन्हें जो वास्तविक सकारात्मक जो जो उनको खुद करना चाहिए
2: जी।
3: उसके लिए टाइम नहीं बचता है ना।
2: बिल्कुल,
3: तो उसमें क्या है कि जैसे उसीलिए उसको इसीलिए मैंने नाम रखा है कि सिर्फ फुटबॉल ज्यादा होती है, लोग बहस ज्यादा करते हैं और सकारात्मक यूज कम करते हैं।
7: नहीं, बहस कर रहे हैं संजय जी ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि इसमें आपने एक टर्म सुनी होगी फोमो, FOMO, क्या कहते हैं इसको कि फियर ऑफ मिसिंग आउट।
3: हाँ,
7: मतलब ये है कि जो फेसबुक है वो एक्चुअली फेक बुक है, इस सेंस में कि आप दूसरे की फ़ोटो देखते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, आपको कभी कभी ये लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं है।
3: हाँ जी,
7: तो उससे काफ़ी लोगों को डिप्रेशन भी हो सकता है। इसीलिए
2: तुलनात्मक चीज़ बहुत ज़रूरी है।
7: हाँ, क्योंकि लोग देखते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया, किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं किया।
3: तो वही तो कह रहे हैं, ज़्यादा लोग उस पर इन्वॉल्व हो गए हैं, लिमिट से ज़्यादा हो गए। अब जैसे कि इसका मैं बता रहा हूँ, व्हाट्सएप का जो मैंने जो जो मैंने जो व्यंग लिखा है उसमें ये इस घटना का उल्लेख है कि व्हाट्सएप के एक नुक्कड़ पे दो वकीलों में जो है बहस हुई, विवाद इतना बढ़ा गया, एक वकील ने दूसरे को गोली पर गोलियां चला दी, वो भी न्यायालय परिसर में।
7: अच्छा।
3: हुआ यूं कि उस वक्त नुक्कड़ पर यानी व्हाट्सएप पर रात में हुई इस बहस की अगली सुबह उनमें से एक वकील तड़के ही थाने जा पहुंचा। वहां उसने एक विचित्र सी नामजद शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने दूसरे वकील पर आरोप लगाया कि उक्त सहकर्मी वकील ने रात को व्हाट्सएप पर उन्हें बहुत भला बुरा कहा, यही नहीं बल्कि उन्हें तथा उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। बताइए, व्हाट्सएप पे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद वो इस शिकायत की सूचना देने न्यायालय बार अध्यक्ष के दफ्तर जा पहुंचे।
7: अच्छा।
3: अभी वो बार अध्यक्ष बात कर ही रहे थे कि वो दूसरा जो सहकर्मी वकील है वो भी आ गया। उसने आओ देखा नताओ इनके ऊपर ताबड़तोड़ 3 गोलियां दाग दी वही अध्यक्ष सामने। बताइए।
7: अच्छा, अच्छा।
3: हाँ, तो इतना ज्यादा बुरा असर भी हो जाता है कि कभी कभी आदमी इतना ज्यादा बहस में आ जाता
7: है। ये सही घटना तो नहीं है ना?
3: ये बिल्कुल सच घटना है, हम आपको अखबार की कटिंग भेज सकते हैं।
7: अच्छा।
3: हाँ
2: बताइए,
7: कमाल।
3: हमने इसीलिए इस लेख पे मैं इसको ऐड किया था इस चीज को, क्योंकि आमतौर पर देखिए क्या है कि भारतीय जो है वो बहस प्रेमी होते हैं, है ना। बहस और मुबाहसे में फर्क तो समझ रहे हैं ना, मुबाहसा वो होता है जिसमें आपने कोई बात कही, मुझे उसके ज्यादा उसके अगेंस्ट या किस कोई बात मालूम है, जो कि मैंने कहा कि देखिए त्रिदीप जी आप जो कह रहे हैं उसमें एक ये भी है पहलू है, तो वो तो हुआ मुबाहसा। दूसरा आदमी कहता है नहीं प्रदीप जी आप गलत कह रहे हैं, वो हुई बहस। तो दूसरे को खाली गलत बताते रहना, इसके ये बहुत आसान काम है और ये इसके लिए भारतीय बहुत फेमस है।
2: जोश आ जाता है एक बार आप में। लेकिन सोचिए कि ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि साइकाइट्री में एक डायग्नोसिस इंट्रोड्यूस हुई है, नई डायग्नोसिस इंटरनेट एडिक्शन।
7: अच्छा।
2: इंटरनेट एडिक्शन इज नो लेस देन ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहल एडिक्शन।
3: बिल्कुल।
2: तो श्रोताओं, आप लोगों को चाहे कितना ही इसमें उपयोगिता हो, लेकिन आपको अपना नियंत्रण उसके ऊपर करना आवश्यक होगा। कि और फिर ये होता है कि हर चीज जो है व्हाट्सएप ग्रुप में वो सही नहीं होती है।
3: हाँ।
2: और आपने जैसे कहा प्रदीप जी, कि हीनता की भावना आ जाती है कि बताइए देखिए इनके यहाँ इतनी पार्टियां हो रही हैं, इतने इनके दोस्त आए, हमारे यहाँ कोई दोस्त नहीं आया, हमारी पार्टी
7: लोगों का डिप्रेशन हो जाता है।
2: और क्या, बिल्कुल डिप्रेशन हो जाता है उससे। तो आपको एक लिमिट में रखना चाहिए कि आप इससे क्या, पढ़ाई लिखाई में अब देखिए जब से कोविड हुआ है तब से तो लगता है कि बगैर इंटरनेट के कोई काम हो ही नहीं सकता है।
3: हाँ।
2: आप कहीं भी जाइए, आपको ऐप चाहिए, आपको पासवर्ड चाहिए और आपको व्हाट्सएप से मैसेजेस चाहिए। तो एडिक्शन जो है वो गलत चीज होती है।
7: और ये पासवर्ड का चक्कर ऐसा है कि हर 2-3 वीक में चेंज करिए और दिमाग खराब हो जाता है। उसमें अपना ही पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर बारों से पीछे लगते हैं, उसमें ही टाइम बहुत वेस्ट होता है। अच्छा, एक बात मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता था कि जैसे यहाँ की ऑस्ट्रेलियन सरकार ने 15 साल से छोटे बच्चों के लिए वो फेसबुक या सोशल मीडिया बैन लगाया हुआ है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शैलजा जी आप बताइए पहले।
2: एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरी बेटी जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया अथॉरिटी में सीनियर लॉयर है, तो उसने अभी एक रिलीज लेजिस्लेशन किया है जिसमें कि स्पेसिफाइड है बिल्कुल चीज़ें कि किस उम्र तक आप कौन से सोशल मीडिया पर जा सकते हैं और क्या इसका रिजल्ट क्या होगा अगर आप पेरेंट्स उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो स्कूल और पेरेंट्स में सब जगह ये अब लागू होगा कि 12 साल से पहले आप क्या देख सकते हैं, 14 साल से पहले, 16 साल से पहले आप क्या देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन जो है अब वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है।
7: लेकिन उसका पुलिसिंग कैसे करेंगे?
2: पुलिसिंग यही करेंगे कि अब आजकल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक नया डिपार्टमेंट उनका होगा जिसमें कि वो सारा का सारा पुलिसिंग करेंगे कि कहाँ किस बच्चे ने कौन सा साइट खोला है। क्योंकि बच्चे जो हैं अगर उनको आप फ्रीडम दे दीजिए तो ऐसे साइट खोलते हैं जो भी आपके नज़रिया में ऑब्जेक्शनेबल हैं।
7: बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी
3: देखिए, ये पुलिसिंग का जो आपने कहा ना, तो ये आप जान लीजिए कि बड़ा आसान है।
7: अच्छा।
3: ये एक बार अगर आप जो भी लिख इसमें डालते हो सोशल मीडिया पे या कंप्यूटर में या कहीं भी फोन पे, वो सारा आप किसी तरकीब से मिटा नहीं सकते हैं, वो रहता ही रहता है। और जो जो जो जो जहाँ पे आपका इसका सर्वर है वो कभी भी पता लगा सकता है कि कहाँ पे, और सर्वर तो आपके जानते हैं इस वक्त। इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है कि हमारे सारे सर्वर जो हैं वो मेड इन चाइना है। अब सर्वर मेड इन चाइना होने की वजह से समझ लीजिए उनके पास कहाँ कहाँ उसमें लिंक होगा, वो कितना पता लगा सकते हैं आपको। प्लस उन्होंने आपको भी गवर्नमेंट को भी लिंक दे रखा है कि साहब आप अगर कुछ जानना चाहें तो यहाँ से जान सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के पास सारा हक है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो वो तो बच नहीं सकता कहीं से, है ना। तो ये तो है एक बिल्कुल की है। और प्लस दूसरी चीज़ जैसे दीदी ने कहा कि अभी कि पढ़ाई लिखाई और वो सब जो है उस सब के लिए टाइम भी चाहिए, वो ना। तो आप अगर टोटल सोशल मीडिया पे ही रहेंगे तो कहाँ से उसे, कहाँ 24 घंटे से 25वां घंटा तो मिलने वाला नहीं है।
7: बिल्कुल है? बिल्कुल। और संजय जी एक इसी से रिलेटेड खास बात ये भी है कि पता नहीं यूट्यूब पर कितने मैंने वो देखे हैं कि आपका बैंक हैक हो जाएगा, आपके पैसे गायब हो जाएंगे। भारत में तो बहुत हो रहा है, यहाँ पर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ किसी तरह से सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा करने से या अपलोड करने से या किसी लिंक पर क्लिक कर देने से ये तो एक इतना बड़ा हेडेक हो गया है।
3: बिल्कुल। एक जैसे कुछ चीज़ें तो ऐसी जिनको आगे आप आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि जब आप कहीं पे भी नया पासवर्ड की बात, जो बात आपने की पासवर्ड डालते हैं तो पूछता है कि डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड ऑन इंटरनेट ऑन गूगल, गूगल को आप सेव करा दिए, ऑलवेज से नो, क्योंकि वो तो कभी भी अगर गूगल का पासवर्ड आपका बाई चांस मिल गया जिस ईमेल एड्रेस से आपने अपना गूगल अकाउंट खोला हुआ है, अगर किसी तरह एक मिनट के लिए भी किसी ने वो एक्सेस कर लिया,
7: एनक्रिप्टेड नहीं होता है जब वो सेव करते हैं तो एनक्रिप्टेड होता होगा।
3: उसकी ट्रिक है, उसकी ट्रिक है कि वो इनक्रिप्शन भी, देखिए कंप्यूटर इज अ वेरी वीक यूनिट, बहुत ही कमजोर यूनिट है, चूंकि पता नहीं है इसलिए हम बचे हुए हैं बस।
7: बिल्कुल।
3: तो उसमें समस्या यही है कि अगर वो एक बार भी उसको अगर एक बार घुस गया किसी तरह से कहीं, उसमें तमाम वो ऑप्शन है, एक एक एक वो है मिस्टर अमित दुबे करके, उनके पॉडकास्ट आप देखिए, हाँ वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि हम कितने कमजोर हालत में हैं।
7: बिल्कुल
3: बिल्कुल, बहुत ही। तो वो जो है अगर एक सेकंड को भी उसको मिल गया आपका एक्सेस तो आपके सारे पासवर्ड फटाफट देख लेगा वो, एक मिनट, बल्कि प्रिंट करके रख लेगा।
2: लेकिन बेसिक जो रूल है वो है अगर आप पहचानते नहीं है किसी भी लिंक को तो आप उस पर क्लिक
3: मत कीजिए, सीधी सी बात
2: बस ये है।
3: और खास तौर से कुछ तो बिल्कुल बेसिक रूल ऑफ थंब रख लीजिए कि आप जो भी आपके पास ईमेल आता है ईमेल से कोई चीज एक्सेस मत कीजिए। ईमेल में आता है क्लिक हेयर, वो कभी मत कीजिए। आप अगर उस साइट के ऑलरेडी आपका पासवर्ड है तो उस साइट पे जाइए, साइट पे अपना पासवर्ड डालिए, वहां भी वो मैसेज आया होगा, इनबॉक्स वहां भी है, जो वो ईमेल आपको भेजते हैं उस वही ईमेल वो उस इनबॉक्स में भी भेजते हैं, तो वहां देखिए जाके ना, यहाँ कह लिए इसमें चक्कर पड़े।
7: बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय जी ऐसा है कि हमारा समय बहुत जल्दी से बीता जा रहा है और हम अब बात करने जा रहे हैं दुर्गा शक्ति।
2: दुर्गा शक्ति
7: ऐसा है कि 1970 के दशक में बहुत सारे भारतीय लोग यहाँ पर आए थे अपने अपने परिवार के साथ, और ऐसा लगता है कि कुछ दुर्गा शक्तियों को, बडिंग दुर्गा शक्तियों को साथ में लाए थे और हमारी महिलाएं ने यहाँ आकर जो आपने कार साज की डेफिनेशन बताई कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत ऊंचाई तक भी पहुंची। और
3: शैलजा जी भी कारसाज ही हैं, चुपचाप अपना काम करती रहती हैं।
7: शैलजा जी बहुत बड़ी कारसाज हैं।
3: बिल्कुल।
7: और शैलजा जी ने उन दुर्गा शक्तियों को कंपाइल किया है, ये नाम दिया है इन्होंने दुर्गा शक्ति इंडियन वीमेन फ्रॉम डाउन अंडर। इस बुक की मैं फोटो शेयर कर दूंगा, इसके सामने बड़ी सुंदर सी एक दुर्गा बनी हुई है।
2: ओ, मैंने कॉन्फिडेंशियली बता दिया है प्रदीप जी को ये कौन है उनके अतीत से।
7: अच्छा, और इसमें 21 सिडनी की नहीं, यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की 21 दुर्गा शक्तियों का नाम दर्ज है और उनमें से एक दुर्गा शक्ति हमारे सामने शैलजा जी बैठी हुई हैं।
2: अब आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं ये कह के, तो लेकिन दुर्गा शक्ति महिला, क्योंकि भारतीय महिलाओं का पूरा अगर आप देखिए विश्व में उनकी जो इमेज है वो ये है कि न तो पढ़ी लिखी होती हैं और न वो कोई बाहर घर के बाहर काम कर सकती हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ कि 1970 में जब मैं होम विजिट के लिए गई किसी के घर में, तो पूरे मुझे लगा कि जैसे कि मैं एक स्पेसिमेन हूँ, क्योंकि पूरे परिवार जो था मुझे देखने के लिए आया कि इंडियन डॉक्टर, फीमेल इंडियन वुमन डॉक्टर, उन्होंने कभी सुना नहीं था, उन्होंने कभी कहीं पढ़ा नहीं था कि भारत की औरत भी डॉक्टर हो सकती है। तो उस वक्त मुझे अपमान लगा ये अपना कि हमारे भारत में वैदिक काल से महिलाओं का इतना आदर हुआ है, हमारे यहाँ माँ का कितना बड़ा आदर होता, भारत माँ होती है, पृथ्वी माँ होती है, और यहाँ ये देख रही है, यहाँ परिवार मुझे देख रहा है कि पहली भारतीय महिला है। और सच ये है कि 1865 में सबसे पहली जो हमारे यहाँ की थी मेडिकल प्रैक्टिशनर, सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया से पहले वो यहाँ पे आई थी, और उनका नाम था देखिए कि आनंदबाई जोशी। 1865 में वो फर्स्ट मेडिकल ग्रेजुएट फ्रॉम पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी थी। ऑस्ट्रेलिया में जो पहली महिला थी वो 2 साल बाद हुई थी उसी यूनिवर्सिटी से।
7: अच्छा अच्छा।
2: तो पहली जो महिला थी डॉक्टर वो इंडियन डॉक्टर थी, और महिलाएं जो हैं भारत की कहां से कहां पहुंचती हैं। और यही मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में एक से एक बढ़कर महिलाएँ हैं। अगर हम सबका उसमें अपनी किताब में अगर सबका हम विवरण देते तो ये पॉसिबल नहीं था। और जैसा कि अभी हमें संजय जी ने कहा कि ये तो 21st सेंचुरी है, इसलिए हमने 21
3: 21वीं सदी की 21 महिलाएं ले ली।
2: 21 महिलाएं हैं और हमारे यहाँ 21, 11 और जो एक नंबर होता है उसको हमारे बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए हमने इस पुस्तक में 21 महिलाओं के विवरण दिए हैं जिन्होंने की आशातीत सफलता पाई अपने अपने क्षेत्रों में। और सबसे बड़ा मेरा भाग्य था, सौभाग्य था कि मेरी जो को ऑथर हैं शिबा नंदकिलियोकर, तो वो जो हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो उनकी भी सहायता थी कि उनका कांटेक्ट बहुत सारे हैं, और शी हरसेल्फ इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन, वो भी रह चुकी हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, बहुत सारी उनकी भी हैं। तो इसमें हमने अपने अपने क्षेत्र में जिन महिलाओं ने अपनी ऊंचाई तक पहुंची हैं, जो पहली महिलाएं हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में इतनी सफलता प्राप्त की है, तो हमने उनका विवरण इसमें दिया है। तो बार बार हमें विश्व को बताना पड़ता है कि भारतीय महिलाएं पीछे नहीं हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि जो हालांकि भारत की रैंकिंग जो है जेंडर डाइवर्सिटी 134 है, लेकिन फीमेल पायलट्स इन इंडिया आर 12.4%।
7: अच्छा।
2: ऑस्ट्रेलिया में 5.8%। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ 12% फीमेल पॉय पायलट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 5.8% हैं. और सोचिए कि 1936 में सरला ठकराल वो जो सबसे पहले उन्होंने प्लेन की पायलट 1934 में अ फीमेल वाज अ प्लेन पायलट. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सुपीरियर मैनेजमेंट में, क्योंकि अब आजकल हर जगह हम यहाँ पे भी सब जगह ये कहा गया है कि कमिटीज में जिस कमिटी में भी महिलाएं रहती हैं उसकी ज़्यादा सफलता होती है.
7: बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद महिलाएं अपने कार्य के लिए ज्यादा सिंसियर होती हैं.
3: जी, मल्टी स्किल होती है ना, हम लोग एक बार में एक काम करते हैं,
7: एक काम करते
3: महिलाएं हैं। जो है एक साथ दो काम कर सकती
2: हैं,
3: है ना, तो उसमें वो उनको एडवांटेज हो जाता है. They can divide their brain in two parts, four parts or something.
2: बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आप ये सोचिए कि male mind जो होता है one track होता है. फीमेल माइंड जैसा आपने कहा ना मल्टी स्किल्ड है. और ये है कि इमोशनल क्वेश्चन आजकल आईक्यू होता है और ईक्यू भी होता है. तो महिलाएं जो होती हैं वो पूरा का पूरा संदर्भ लेती हैं. आप सिर्फ देखते हैं कि ये 8:30 बजे काम करने आ सकती है कि नहीं. महिला जो है वो देखेगी कि बच्चों को बच्चों का इंतजाम हो गया है कि नहीं हो गया है. एंड आई थिंक वो जो है इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने मेरे विषय में ये सोचा हो कि इस बच्चों को इसने खाना दिया है कि नहीं, तो मेरा आपका जो संबंध है उससे कहीं ज़्यादा गूढ़ हो गया. मैं सोचूंगी कि आपने कम से कम ये तो सोचा कि मेरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो इसलिए भारतीय महिलाएँ जो हैं वो काफ़ी आगे हैं. तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीनियर मैनेजमेंट पोजिशन में महिलाएं जो है 39% अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 31. इंडिया में लोग सोचते हैं औरतें घर ही में रहती हैं, लेकिन 39% इन सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन एंड वर्ल्ड एवरेज इज 31%. इंडिया में 98% बिजनेसेस में कम से कम एक महिला रहती है, और जबकि विश्व में इसकी परसेंटेज 90% है. हमारे यहाँ 98% है, हर बिजनेस में एक महिला रहती है. तो इस तरह से और मिड मार्केट बिजनेस में भी इंडिया कहीं आगे. 47% मिड मार्केट बिजनेस में महिलाएं होती हैं और 26% ग्लोबल एवरेज है. तो इस तरह से देखिए कि भारतीय महिलाएं पीछे नहीं हैं. फिर विश्व में आके हमारा सबसे बड़ा भारतीय हम लोग हैं, हर जगह हम जाते हैं. समय हो रहा है तो मैं संक्षेप में बस बताना चाहूँगी कि भारतीय जहाँ भी जाते हैं हम कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि हमारे भारत की इमेज ख़राब हो. और भारतीय महिलाओं ने भी वही किया है कि हम जहाँ भी गए हैं. एक किताब फिजी में निकली थी, बहुत ही अच्छी किताब, फिजी माँ. तो उनका क्लेम था कि फिजी की जो संस्कृति है वो पुरुषों से नहीं, फिजी की माँ से.
7: बिल्कुल,
2: माँ से संस्कृति उसकी है. तो इसीलिए हमने सोचा कि ये पुस्तक जो है ये आवश्यक है हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके लिए बड़ी इंस्पायरिंग होगी किताब.
7: बिल्कुल बिल्कुल, तो शैलजा जी ऐसा है कि समय की कमी तो है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं सब दुर्गा शक्तियों का, जो आपने 21 दुर्गा शक्तियाँ हैं उनका नाम पढ़ दूँ, और आप चाहें तो उनके बारे में एक एक सेंटेंस बताते
3: हैं. रैपिड फायर राउंड,
7: रैपिड फायर
3: राउंड.
7: नंबर एक, अनीता बरार.
2: अनीता बरार जी जो हैं वो SBS की ब्रॉडकास्टर हैं. वो बहुत डॉक्यूमेंट्री उन्होंने कई सारी बनाई हैं, लेखिका हैं वो और पत्रकार हैं.
7: आस्था तोमर.
2: आस्था तोमर ये जो है ये सबसे पहली फीमेल साइकाइट्रिस्ट जो कि कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट की प्रेसिडेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है. एंड ये जो है सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट हैं.
7: बारबरा वार्ड.
2: बारबरा वार्ड जो है फिजियन है और ये पॉलिटिशियन है.
7: करिश्मा कलियंडा.
2: करिश्मा कलियंडा ये भी पॉलिटिशियन है,
7: यहाँ आ चुकी है हमारे स्टूडियो.
2: जी हाँ जी हाँ, और ये बेंगलोर की हैं और ये लिवर वेस्टर्न सिडनी में MP हैं.
7: डॉक्टर चंद्रकांता गरियाली.
2: चंद्रकांता गरियाली जो है ये चीफ सेक्रेटरी थी वहाँ तमिलनाडु में. अच्छा. IAS ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर. अच्छा. लेकिन ये रहती हैं न्यूकासल में.
7: अच्छा. डॉक्टर मर्लिन कांगा AO.
2: मलिन अनुराध, ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अभी जो है वर्ल्ड इंजीनियरिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोटेड है कि यहाँ पे कितना अंडरएस्टिमेट किया जाता है इतनी पढ़ी लिखी और इतनी इम्पॉर्टेंट स्त्री को. तो इंजीनियर हैं IIT बॉम्बे की.
7: अच्छा अच्छा. डॉक्टर रजनी आनंद लूथरा.
2: रजनी आनंद लूथरा जो है ये भी इन्होंने PhD की है साइकोलॉजी में, लेकिन ये जो है इंडियन लिंक में की एडिटर हैं.
7: डॉक्टर पैडी पराकाला.
2: ये हैं लॉयर हैं यहाँ पे, इनकी भी अपनी अपनी कंपनी है.
7: जयश्री कुलकर्णी.
2: जयश्री कुलकर्णी ये जो है ये साइकाइट्रिस्ट हैं और ये पहली प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री थी मेलबर्न में. अच्छा. फीमेल इंडियन.
7: कुमुद मीरानी.
2: उमर
7: कुमुद
2: मीरानी ये भी मशहूर जानी मानी हस्ती हैं यहाँ की SBS में कि ये रह चुकी हैं बहुत सालों. इन्होंने करीब 35 से 40 साल काम किया. कुमुद जी ने
3: हिंदी के लिए बहुत काम किया.
7: लीसा सिंह.
2: नहीं
7: लीसा सिंह.
2: लीसा सिंह जो है एंग्लो इंडियन समझिए, ये तस्मानिया की हैं और इन्होंने ये भी पॉलिटिशियंस रह चुकी हैं.
7: माला मेहता.
2: माला मेहता इन्होंने पहला स्कूल हिंदी का आरंभ किया था, ये भी सिडनी की हैं.
7: मीनू शर्मा.
2: मीनू शर्मा जो हैं ये हैं, इन्होंने भी अपना एक ये जर्नलिस्ट हैं और इनका भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है.
7: मीतू भौमिक
2: जो हैं ये फिल्म इंडस्ट्री से.
7: यस, ये हमें पास दिया करती थी.
2: जी हाँ.
7: मौलिनी अस्थाना.
2: ये लॉयर हैं और इन्होंने भी यहाँ काफ़ी कुछ पहली पहल की है.
7: प्रीति बजाज
2: ये जो है इनकी अपनी कंपनी है और इन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है जो कि पहल है भारतीय महिलाओं में.
7: प्रोफेसर वीना सहजवाला.
2: वीना सहजवाल वो भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं. वो भी बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की हस्ती हैं. कानपुर की ग्रेजुएट हैं ये.
7: अच्छा.
2: IIT.
7: रीत फुलवानी.
2: कितना
7: रीत फुलवानी.
2: ये फुलवानी ये जो है ये भी एंटरप्रेन्योर हैं और इनका भी बहुत कुछ कोलैबोरेशन है.
7: सबा आब्दी
2: या सबा जैदी ये जो है ये भी बहुत जानी मानी हस्ती हैं क्योंकि ये ऑल इंडिया रेडियो में वहाँ पे इंडिया में काम कर चुकी थी. अच्छा. यहाँ पे इन्होंने इनका टेलीविज़न अपना था स्टेशन था. अब सबा जी जो हैं वो काफ़ी सारे ड्रामे वगैरह करती हैं और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा की ग्रेजुएट हैं. ये भी बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं.
7: और आपने 21वां नाम दिया है सोनिया गांधी का. ये सोनिया गांधी यहाँ कहाँ से आ गई.
2: ये सोनिया गांधी जो है इतनी कन्फ्यूजिंग है. जब मैं पहली बार मिली तो मैंने कहा आपकी शक्ल तो बिल्कुल नहीं मिलती तो तो ये सोनिया गांधी जो है इनका नाम पहले तो और था लेकिन उन्होंने चूंकि शादी की वही हिस्ट्री है कि ये हैदराबाद की हैं और ये जो हैं ये मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं सोनिया गांधी. लेकिन ये वो अपनी वो वाली सोनिया इटालियन नहीं है. ये भारतीय हैं हैदराबाद की हैं और इनके पति का नाम है गांधी.
7: अच्छा ऐसा है कि ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी सर्विंग एन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सपोर्टिंग ग्लोबल मेडिकल कोलैबोरेशन. शैलजा जी आप नंबर वन दुर्गा शक्ति हैं
3: जी.
7: हमारे कार्यक्रम में आप आती हैं, हमें बहुत गर्व होता है कि आप हमारे साथ.
2: ये तो आपकी जरा नवाजी है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है. नहीं. मैं तो सोचती हूँ कि सब कुछ भगवान की तरफ से होता है.
3: नहीं हम आपके बारे में एक शेर कहना चाहेंगे.
2: बिल्कुल बिल्कुल फरमाइए.
3: कि ये मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ.
2: अच्छा अच्छा.
3: कि बस यूं ही ना गुजर जाएंगे हम इन पेचीदा रस्तों से.
2: वाह वाह क्या.
3: बस यूं ही ना गुजर जाएंगे हम इन पेचीदा रस्तों से, हमारे कदमों के निशान कल और भी गहरे होंगे.
2: अरे वाह अगर रह जाएं तो बहुत बड़ी बात है. ये तो मेरी किस्मत
3: किसी की. किसी राख के ढेर से आने लगे जो आंच तुम्हें.
2: हाँ.
3: बहुत मुमकिन है कि हम उस राह से गुजरे होंगे.
7: अच्छा ऐसा है कि हमारा समय अब समाप्त होने की तरफ जा रहा है तो हम एक
2: गीत
7: फिल्म आई थी आनंद 1970s की फिल्म थी.
2: बिल्कुल.
7: राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन.
2: ये तो बहुत ही बड़ी
7: बात. जब ये रिलीज हुई थी तब इसको ज्यादा लोगों ने नहीं पूछा लेकिन जब लोगों ने देखना शुरू किया तो ये इट बिकेम वन ऑफ द वेरी हिट फिल्म. अच्छा इसी का एक गीत है राजेश खन्ना पर फिल्माया गया है. सुनिए.

0: कभी तो हंसाए।
1: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो शैलजा जी, हमारे रिएक्शंस आए हुए हैं, लेकिन पहले श्रोताओं को बता दें कि शैलजा जी ने दुर्गा शक्ति पर एक वीडियो लगाया हुआ है, बहुत सुंदर वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखें। इसके बाद राजेश जी लिखते हैं, शिक्षा प्रद विचार और मधुर भजन। लीला तिवानी जी, ज्ञानवर्धक समाचारों के बाद प्रेरक विचार और मधुर भजन से आज का दर्पण रेडियो का शुभारम्भ मंगलमय रहा। नितिन कुंदप कहते हैं कि धन्यवाद दर्पण टीम, महत्वपूर्ण चर्चा इनकम टैक्स पर। अच्छा, मोहिनी जी ने कुछ लिखा था, डिलीट क्यों कर दिया मोहिनी जी। नितिन कुंदप कहते हैं, आशा है सीजीटी के बारे में भी बात होगी, इट्स द मोस्ट अपसेटिंग रूलिंग फ्रॉम द ईयर्स बजट। तो ये हम किसी और प्रोग्राम में कवर करेंगे अगले साल के लिए। ऋचा जी ने क्वेश्चन पूछा था, वो हमने पूछ लिया है। राजीव निगम जी बोलते हैं, नमस्कार जी, इट इज़ रियली नाइस टू हियर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन वी कैन डू इन कनेक्शन विद द डिपॉजिट इन आवर सुपर डायरेक्टली टुडे विद थ्रेशोल्ड ऑफ 30,000। थैंक्स, वेरी गुड डिस्कशन ऋचा जी, धन्यवाद। अच्छा, इसके लीला तिवानी जी फिर बोलती हैं, संजय जी के लेखन की कहानी कुछ कुछ हमसे मिलती है। लीला तिवानी जी, आपको यहाँ आकर हमें बताना होगा उस कहानी के बारे में, हालांकि आप यहाँ पर कई बार आ चुकी हैं, लेकिन एक बार आकर संजय जी से मिलते जुलती कहानी बिल्कुल से जरूर सुनेंगे।
3: और क्या, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा हमारा कार्यक्रम सुनती हैं
2: और कमेंट करती हैं।
3: बिल्कुल,
2: टैक्स पर यतीन जी की वार्ता बहुत ज्ञानवर्धक रही, इसमें से बहुत सी बातें हमें मालूम नहीं थी। लीला तिवानी जी फिर बोलती हैं, दुबे जी बोलते हैं, राम दुबे, गुड टू हियर द टैक्स प्लानिंग बाय वाई जी एंड संजय क्रिएटिव स्ट्रीक। आशिमा जी बोलती हैं, वेरी गुड प्रोग्राम। लीला तिवानी जी फिर बोलती हैं, वाह सोशल मीडिया डिजिटल चौपाल लीला तिवानी। राजीव निगम जी बोलते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इफ एम्प्लॉय रेज इनवॉइस टू द एम्प्लॉयर फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट इन विच ही इंक्लूड्स द GST इन द एवर इनवॉइस। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यतीन जी से आप डायरेक्टली बात कर लीजिए यहाँ पर।
4: सही बात है,
2: इस ग्रुप में उनका नंबर है, आप उनसे बात करिए, उनको बड़ी खुशी होगी कि आपने दर्पण के माध्यम से उनसे बात की। मृणाल जी बोलते हैं, संजय जी को उनकी ही जुबानी सुनना एक विशेष अनुभव है, उनका लेखन सार्थक और कड़े प्रश्न भी उठाता है। रंजना जी की डिजिटल चौपाल एक साधे हुए निबंध सा लगा। प्रदीप जी और शैलजा जी की प्रस्तुति तो विशेष होती ही है, दर्पण रेडियो को आज के अंक के लिए आभार। अरे मृणाल जी, आप कहाँ छुपे हुए हैं, हम तो आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं
3: कि आप आ जाएं इस रेडियो प्रोग्राम में।
2: रेडियो प्रोग्राम में आइए,
4: बड़े बढ़िया कवि हैं।
2: और उनकी हिंदी बहुत
4: कविता
2: परिष्कृत हिंदी,
4: हाँ परिष्कृत हिंदी के अलावा बहुत सारगर्भित लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं,
2: बहुत बढ़िया,
4: और छंद का ज्ञान बहुत अच्छा।
2: और आपसे भी यंग हैं,
4: मैं मिल चुका हूँ, मेरी किताबें ये भी पढ़ते हैं।
2: अच्छा,
4: मेरी किताबें भी पढ़ते हैं।
2: राजीव निगम जी बोलते हैं, समटाइम्स पीपल बिकम एडिक्ट ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, लीला तिवानी जी फिर ने बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने, सोशल मीडिया पर रंजना जी की वार्ता बहुत शोध के साथ लिखी, अत्यंत ज्ञानवर्धक लगी लीला तिवानी। अच्छा, इन्होंने दिखावे की दुनिया, दिखावे के लोग, सोशल मीडिया बना स्वयं
3: भयंकर रोग,
2: सबसे
4: भयंकर रोग, क्या बात है।
2: अच्छा, दो लाइन और पढ़ूंगा, आभास ही इस दुनिया में केवल है आभास, लाइक कमेंट बढ़ते रहे एक यही है आस।
3: जरूर जरूर
4: बिल्कुल सही कहा आपने, कहा
2: पूरा तो समय नहीं है इसे फिर से आप पढ़ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे जाकर। राजीव नेगन जी आज बड़े एक्टिव हुए हैं, रियली सरप्राइजिंग टू नो द क्रिमिनल इंसिडेंट बाय प्रोटेक्शन लॉयर। रमेश जोशी जी बोलते हैं नमस्कार टू ऑल, जस्ट वांट टू योर क्रिमिनल इंसिडेंट बाय प्रोटेक्शन लॉयर। रमेश जोशी जी बोलते हैं नमस्कार टू ऑल, जस्ट वांट टू योर

0: आजकल एक और अपराध कथा चर्चा में है। पुणे में एक लड़की ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी थी, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या अपराधों की सोशल मीडिया का योगदान है। अच्छा, ये बहुत बड़ी चर्चा है, किसी दिन आपसे करेंगे उपाध्याय जी। आशमा जी कहते हैं, कूडोज टू ऑल द इंडियन वीमेन हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन कम्युनिटी। उपाध्याय जी, रैपिड फायर राउंड में शैलजा जी को 10 में से 10 नंबर दे
1: रहे। क्या बात है,
2: क्या पास कर दिया आपने।
0: कहीं नीट पर पेपर आउट तो नहीं?
1: पेपर आउट हो गया।
0: और सुनिए, शैलजा जी और संजय जी की लेखनी में जादू है। ऋचा जी बोलती हैं, संजय जी क्या बात कही, शैलजा जी को समर्पित शेर अति सुंदर।
2: वो तो और भी ज्यादा सुंदर था
1: जी, बहुत शुक्रिया।
0: तो शैलजा जी, ऐसा है कि आपने कुछ डिसाइड किया है किसे प्राइज दिया जाएगा?
2: डिसाइड किया है,
0: आपने डिसाइड किया है ना कि आप दो टिकट, जो गाता रहे मेरा दिल
2: जी,
0: दो टिकट आप किसे देने जा रहे हैं?
2: यस, हम देखिए, हम सोचते हैं कि राजीव जी को टिकट क्यों ना दिया जाए।
0: राजीव जी और मृणाल जी दो हैं,
2: मृणाल जी या राजीव जी। राजीव जी को तो मिल चुके हैं टिकट की?
0: हाँ, नहीं, हाँ, मृणाल जी को नहीं मिला है मेरे।
2: मृणाल जी ये
0: कम से कम पकड़ में तो आए हमारे।
1: हाँ
2: बिल्कुल,
1: बहुत जरूरी है उनको।
2: हमारे
1: अच्छा, जिस दिन मृणाल जी को बुलाइएगा हमें बुला लीजिए।
0: अच्छा ठीक,
1: साथ ही साथ आएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: हमारे यहाँ हमारे देश में घूस चलती है खूब की, तो ये प्रदीप जी आप घूस दे रहे हैं
1: सरेआम रेडियो पर।
2: सरेआम रेडियो पे आपके आपके अगेंस्ट तो पूरा एक्शन लिया जाएगा मृणाल जी।
0: बिल्कुल, अब देखिए हमारा समय समाप्त होने की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले हम संजय जी से पूछेंगे कि आपका अंतिम शब्द हमारे लिए कुछ बोल दीजिए।
1: मैं दो गीत की लाइनें पढ़ दूं वो ज्यादा सही?
0: बिल्कुल जल्दी, हाँ, जल्दी से जल्दी से।
1: ये एक तरह से ये है कि आपका जो मतलब जो हम लोग जिस तरफ दुनिया जा रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा कि उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। सोशल मीडिया में जो कमियां हैं या जहां कहीं भी हैं, जो भी हम गड़बड़ कर रहे हैं उसके से रिलेटेड है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि यूं सांसों ने घोटा है दम ये मेरा, भरोसा हवाओं पे कम है जरा, मुझे ख्वाहिशों से न बहलाइए, अंधेरों से गहरा है सपना तेरा, यूं अपना गुलिस्तां तू रुसवा करे, भरोसा तेरा यार कैसे करूं, जो अपने चमन से ही नाराज हो, बता दे उसे यार कैसे कहूं, कैसे कहूं।
0: बहुत सुंदर संजय जी, बहुत बढ़िया, आप यहाँ आए हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आते रहिए। और शैलजा जी, तो हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और हम लोगों की ओर से हमारे श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार।
1: नमस्कार
2: और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने इतना समय दिया हम लोगों को। इस हमारी सफलता इसी में है कि हमारे श्रोतागण इससे कुछ पाए।
1: बहुत सक्रिय योगदान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
2: यस,
0: और ये है कि मैं अपने श्रोताओं से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हमारा कार्यक्रम चल रहा हो तो कमेंट जरूर करें, कुछ वीडियो वगैरह अगर आपको डालने हैं तो उसके बाद डाला करिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारे कार्यक्रम में आप अपने कमेंट लिखिए, उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और सिर्फ ये नहीं कि आप हमारी तारीफ करिए, आप हमारी कमियों में भी बताइए या किस तरह से हम इसे और अच्छा कर सकते हैं, ये
2: वही तो असली चीज है। हाँ, कि क्या हम नहीं कर पा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी के साथ हम एक गीत छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और ये भी फिल्म कट्टी पतंग से ही है और किशोर कुमार की आवाज़ में है, तो आशा है आपको पसंद आएगा।
2: अब एक बार हमें किशोर कुमार का प्रोग्राम पूरी पूरे उत्साह से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर
0: बिल्कुल
2: कलाकार थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।

हो कर दिया तड़की तक और पुदुंगा हुए हक ऑफ कर दिया ने से मिसी वाया मि फैंगलो तक या ओ केड़े सी कोंगोलवा किया है तब ताला उन्होंने किया है फिनी